प्रभात आकाशवाणी आज दिन मंगलवार है सत्रह वर्ष 1948 से तिथि 5 तदनुसार 26 मई सन 2020 इस समय सुबह के 5:59 होने को है। आप सभी का

चर्चा को आगे बढ़ा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन

उसमें है तो पद्म भूषण और 58 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

अच्छे थे, कई होटल और किलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार

की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर

राज्यों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में शायद महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया।

per 15 metri. Per esperto a tali simetri, quindi stendi per i panni, sancla per nota stendi per di più rai. Dalla carne, secondola in alcune, quindi sancla per certo a pari. Está conectada para mantener al campo de cierta valencia, recibiendo rivali de partido. Sabe que gole de crédito. Camera de arte para continuar sal de cierta valencia. Al de cierta pandra minuta, tiene trivelli. Alec o suerje, Radil Ashoka. Es para que un capo no preparen a tener al de cierta valencia. आज बजकर 30 मिनट पर आपके मेन्यू से प्रलोक कार्यक्रम 9:30 मिनट पर आज के संचार कार्यक्रम केंद्रित हुआ निर्माता निर्देशक करण जौहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 मिनट पर। सुबह 10 बजे प्रसारण सुनिए सेहतनामा, थायराइड की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है रामकरण मेरा की। 11 बजे सुनिए रामकरण कार्यक्रम। 12:05

करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें रक्षा प्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे।

तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दासर वंशी भोपाल श्री राम वर्मा कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति चिकनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन।

का छोटी उम्र में ही देहांत होने की वजह से स्वाति चंद्राल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वें साल में स्वाति चंद्राल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इन्हें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदिताल, देशादिताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाए या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाए, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति चंद्राल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरे। यह कृति स्वर मात्र के आदि ताल में निबद्ध है।

0: कारण पर आधारित था। अभी आपने सुना आवाजें थी हेमंती शुक्ला और ये सुदास थी। कल इसी क्रम में आपको सुनाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्हन।
1: कवि भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपा।

हम भूले बिखरे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना सिंह के गाने के साथ। गीता दत्त की आवाज, शाहिद लुधियानवी के बोल और दत्ता का संगीत।

0: से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। उजाले उनकी यादों के 31

0: सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुमन अभुले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31

बोल शंकर जैसे शंकर संगीत। इस गाने के पहले हम आपको सुनवा रहे थे भूल पुछी शहनाई सिंह से गाना, जिसके बोल लिखे थे भरत प्यास ने। हमेरा ही प्यार की कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

心里面的什么感？

की शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीएपीए को जल्द पूरा करने

through us and motivate us.

धन्यवाद सर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा

संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, न्यूज पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध

में मोदी को ग्यारह शून्य से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर बन गया। शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आगे वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलने का नाम ही गाड़ी होता है।

जहाँ शरीर के कल पुर्जे रवा होते हैं वही जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन आबाद चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आस पास कुछ थमा हुआ या असर दिखे जो मन से टूट गया हो तो उसे आश्वासन देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो

कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काली बन जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर

por causa do resultado.

Eddie.

सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने

that.

बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में,

निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले

की जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी।

होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंप कर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितने भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन

लेखक अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं

छू गई। करण के करियर की बेहतरीन

इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो न हो, दोस्ताना, वेकअप, आई हेट लव स्टोरीज,

से कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को

उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था किरदार हम्बाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पॉन्स के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए

बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम

from the deep list.

का समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश

Thank you.

Então, para que assim, a absoluta falta de

Obrigado.

का महीना, सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहरियों का महीना, नदियों की चोटी पर पहुंचने की अपने दिलों वाला महीना और बचपन की मई का महीना, दो मुख्तलिफ तस्वीरें हो जाते हैं। बड़ों की मई अलग लेकिन बच्चों की बोल ही संसार रखते हमारे एहसासों की मई, जो उम्र के हर पड़ाव पर दुनिया के किसी कोने में रहे पर यादों में सदा जिंदा रहती है। हम सब शिक्षा में अपनी अपनी मर्यादी होगी, उनकी खुशियों के महत्व के बाजार और मछली की तरह जमे हुए तरबूजों की सरकार और छुट्टियाँ आनंद की इजाज करें। गर्मियाँ जिन्हें जरा भी पता नहीं पाती वो यही हैं छुट्टियाँ। बचपन की गर्मी की छुट्टियाँ पहाड़ों जैसा आनंद देती है। नानी मामा बुआ का घर कहीं भी हो, जहाँ की छुट्टियों को अलग अंतराल बताया गया हो, वहाँ गर्मी का रस्सी भर भी एहसास नहीं हुआ होगा।

अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण डॉक्टर बनजामिन सिंगरेवाल की। 26 मई 1906 को पंजाब के मुकुंदपुर में सिंगरेवाल का जन्म बचपन जो था वो बर्मा में बीता। प्रकृति से उन्हें गहरा लगाव था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली और भारत लौटे तो देश को भूख और अकाल उन्होंने जान लिया कि विज्ञान का उपयोग देश की किसानों की तकदीर बदलने के लिए करेंगे। साल 1937 में वे दिल्ली के ऊषा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े। बाद में वे भारतीय निरीक्षक की बनी। डॉक्टर पाल का सबसे बड़ा योगदान था गेहूँ की ऐसी किस्मों को विकसित करना जिनकी 800 जैसे गेहूँ की सीरीज बनाकर उन्होंने देश में कृषि क्रांति की मजबूत नींव रखी। जब हम 70 के दशक की कृषि क्रांति की बात करते हैं तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के साथ डॉक्टर वीपी पाल का नाम भी सुनहरे अक्षरों में याद किया जाता है। वे भारतीय कृषि

वैज्ञानिकों ने के साथ साथ कहा जा सकते थे हमेशा फूलों के लिए आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर बी पी पाल को भारत का रोज मैन भी कहा जाता है। उन्होंने गुलाब की 100 से अधिक नई किस्में विकसित की थी। पायल, अकेला, कमला नेहरू और डॉक्टर होमी भाभा जैसे गुलाब की मशहूर किस्में उन्हीं की देन है। दिल्ली का प्रसिद्ध रोज गार्डन उनकी इसी दीवानगी का खूबसूरत नतीजा है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति घर और दुर्लभ कलाके के आदेश से कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम कर दी थी। 14 सितंबर 1989 को विज्ञान का ये चमत्कार की तरह हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। लेकिन आज के संसदीय किसी कोने में गेहूँ की फसल लहलहाती है या किसी बगीचे

मजबूत हवाई सहारे की और होती है भारतीय वायुसेना की। जी हाँ, 26 मई 1999 यही वो तारीख है जब भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की थी। इतिहास में ये पहली बार था जब वायुसेना इतनी ऊंचाई पर, यानी लगभग 18,000 फीट पर, बेहद

सब श्री मान कोई और एक पुलिस ऑफिसर की ट्रैक पर लेकिन भारतीय वायुसेना के हौसले इन पहाड़ों से भी ऊंचे थे। वायुसेना ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। मिग 27 और मिग 23 और मिग 27 के साथ साथ हमारे पास पायलट थे। रात के अंधेरे में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके दुश्मनों के बंकरों और सप्लाई डिपो को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। टाइगर हिल और मोन्टो ढाले जैसी चोटों

1999 को जब कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ तो ऑपरेशन सफेद सागर की

Gracias a los que

लिए ये नया शब्द है तो आपको बता दें कि

सूर्यास्त होगा शाम के 10 बजे

tiene

Bence

Sí.

이렇게까지 많이 주셨는데, 정말 많은

Sí, dale sentido.

negative presentation.

है, ये भी तो मुझे बताइए कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपके मेल खा चुके हैं, आपके लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता है हमारे साथ उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले उसके जवाब आ चुके होते हैं, लेकिन मेरे सवाल पूछने से पहले ही

you put some money down, making money even if you can. सवाल कुछ तेल का भजन देते हैं क्या कहें कोई भी पहेली को थोड़ा और खुशी बनाते हैं तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म के जो गीत अभी आपने सुना उसमें राज्य और ऋषि कपूर तो थे ही लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे तो आप उनके नाम लिखते हैं कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राज्य के अलावा और कौन कौन है ये जरूर मुझे भेजिए अभी हम चलते हैं आपकी फिल्म से हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद भी जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर और अपने धर्म पत्नी से बिछड़ना पड़ा था उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज है वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं वो बिछड़ना याद आ रहा है जी हाँ प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना उसका मजा ही कुछ और होता है साथ ही साथ चादर जैसी आंखों से आंखें बातों के बिना बोले सामने वाले की आंखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना ये भी कहा जाता है चादर जैसी आंखों वाली साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपने की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद से जगाते हैं जी हाँ बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने

ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही साथ जो पिलर बज रहा है वो क्या है उसकी वीडियो की नजर ले जाए। साथ ही साथ गीत की शुरुआत में जो होता है जो इंटरव्यू जिसे कहा जाता है उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितनी करीब है और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ और उस जंगल की जानब निकल जाती है। वहाँ पेड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ समय पार करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कभी न जाने क्या क्या कह रहा है। मेरे भारतीय के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे ऊपर श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे ऊपर श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, उनकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर रहे हैं। साथ ही साथ आम का पत्ता शरबत बस छोटे छोटे पदार्थों का सेवन करते हैं और साथ ही साथ मुझे गीत है इनके साथ हम बने रहे। बिल्कुल चलिए आपको ले करते हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है। जो गीत है कौन सी फिल्म से लिया गया है मुझे बताएं।

को बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। पर अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है।

जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है, मगर जो कदम बढ़ाकर किसी को तो वो से आ जाता है। जीवन आबाद चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आस पास कोई थमा हुआ या अचल दिखे जो मन से टूट गया है तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए, रुके हुए को चलने का उत्साह देने के लिए तो

करते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है। प्रक्रिया है मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से संवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार संभालती रहती है। कभी तो कई बार लोग साथ न मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंदिर तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

जो कि बैठक की अध्यक्षता की स्क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा

because

क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स के वक्त क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों पर लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान दे

is आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आम सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमरीका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांसू सीमा चौकी का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक्सप्रेस वे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई।

person at the end.

So that'll be better.

सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में

point

में

got it.

complete.

vita di Axel Delfino, ma

शिवाचार्य सिंह, छोटे से मोटे शिवाचार्य बहुत बड़ा।

0: छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपनी पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने

0: पानी हमने फिर ऐसे साफ आते, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे ऐसा स्टाफ आर्टिस्ट ड्राइंग हुए थे। फिर ऐसा फ्लू प्लेयर बनाए बनाने के बाद की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकॉस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, तो आज मैं तो वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
1: तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: आपके ही परिवार में वापसी है आप
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स होम कमिंग बैक। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी, पंडित अमरनाथ जी
0: जी अलग ही मानसरी बात
1: जी बिल्कुल मानसरी बात है। पंडित अमरनाथ जी जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के बाद दिव्यांग के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट आकाश पे उन्होंने वाद्य वृंद की रचनाएं की, और जो प्योर जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, जो बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खान जोड़ी। अब बिलास खान ने थोड़ी राग गाना बजाना ही उसको, उस राग को संभालना ही मुश्किल है, और गोरख कल्याण सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहार और फिर राज, इन सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
1: और इन रागों को
0: वाद्य वृंद बनाना वो भी
1: और विकलन के आधार से।
0: अब सारे गामा पदा नी जानी ना तो मा गा देगा। अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते थे, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा नी सा और एस आर जी एम, सारे गामा पादा
1: दोनों नोटेशन करते थे
0: पिताजी करते थे। हाँ, तो साफ नोटेशन नहीं लिखते थे, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको एस आर जी एम में

0: पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ म्यूजिशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, स्कोर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, म्यूजिशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम म्यूजिशन सीखने को भी एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से, बोली जो ट्रेनिंग भी थी और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी ज्यादा यार मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की उसे याद कीजिए। जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुम्बस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है। और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,
0: और भी बनवा
1: और भी। तो आप क्या करना भी करते थे?
0: हम लोग करते थे बच्चों से
1: सारे बताते थे।
0: हाँ, थोड़ा सा जलवा रहे बट हाँ बदमाशी करते थे।
1: बगीचे से आम चुराए,
0: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
1: ओ हो हो,
0: सर को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेजी।
0: घर शिकायत में घर वालों को स्कूल भी बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने?
0: आपने पकड़ लिया होगा, आपने मुझे पकड़ लिया, रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने।
1: जी जी,
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे टीचर ने। इसको धर्म बोलते हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके ऊपर। हाँ, तो बदमाशी की है सर। और कभी कभी स्कूल से जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा,
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, तो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे।
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे।
1: और ज़माना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। तो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले पर पहुँचे नहीं।
1: और पहुँच गए
0: तो ऐसी बदमाशियाँ रही। फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियाँ थी हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: अनुशासन, आप सब छोटे थे तो लाल भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाल नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
1: जी, ये साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो एक अनुशासन में रहने का जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में

0: सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें तो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज सब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, उसको ग्रास्पिंग तो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी के साथ बड़ा हमें लाज प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूँ कि मेरे दादाजी की बात थी,
1: अरे गजब
0: इतने साल पुराने हो गए मेरे दादाजी, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी वो शांत हुए, उनकी इसकी 104 साल।
1: ओ हो हो गजब,
0: वो तो मिस्ट्री था। और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब की उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी 62 वाली वो पार्ट थे उसके।
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना की वॉर थी, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड,
1: लेकिन वो शहनाई भी हो जाते थे,
0: शहनाई थोड़ी नहीं होती, रियाज भी थोड़ा होती,
1: और भी होते हुए।
0: हाँ
1: वाह वाह,
0: शहनाई और एक बांसुरी वो होते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी की वजह से पूरे खानदान में
1: गजब,
0: सिर्फ दादाजी की वजह से त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा त्रिपुरा बांसुरी में क्या स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है जहाँ पे कॉर्ड लगता है माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल,
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ड नहीं होती है,

0: कंचन का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांध से, अपने घराने के बांध से। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है मुकम्मल वो वैसे ही बजाते हैं, पंचम हम होल यूज करते हैं। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांधी थी।
1: क्या बात, ये तो अद्भुत।
0: अगर बांसुरी उनका आशीर्वाद है, मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे रिटायर के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत फिट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे, हम तीनों का 4 बजे उठ के मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि रात भैरव में एक चाय गानी, तीनों को गानी, वो चाय कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, और वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। तो पाश्चात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के थ्रू। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह,
0: तो सारे गाधा एक हम बंदी जाते थे तीनों भाई उससे,

0: कुछ बता दूंगी यहाँ ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है चार बजे के बाद, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, क्या है, क्योंकि नींद के लिए जारी होती है ना
1: बिल्कुल,
0: और वो चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो उस वक्त जगा दिया जाता था दिल्ली बॉर्न बॉटम दिल्ली
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक हो रही थी
1: लगा हुआ आपकी
0: पर वो जगह पर। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से एंड जस्ट हैव टू गो वॉक डू व्यायाम जो प्राणायाम व्हाटएवर। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए नहाया धोया नाश्ता किया 8 बजे से बैठे नाश्ता करके उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी को ये बात की

0: सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग, तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने फैमिली में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। तो हमारा रियाज होता था तकरीबन 5 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक शाम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस गया, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था, उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था चले जाते थे, वो चलता ही रहता था इस रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30-11 बजे अगर

0: बच्चे जो सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पिताजी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, मारते नहीं था, पर डर इतना था कि उनकी आंखों से और आवाज़ से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरे लेके आओ। अब चाबी नीचे उठे, मुँह में पानी डाला है, फिर दोनों बाजरे लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे।
1: ओ हो, तो सारी रात जाग जाए,
0: पूरी सारी रात जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आता है छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल का रियाज होता था, लाला जी के साथ भी। तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उस रियाज चाहते हुए, रियाज चाहते हुए, अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा। पर मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि उस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में, ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया, संगीत दिया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बनी। मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी। ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। तो और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते।
1: बिल्कुल,
0: जीवन जीने का, आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है। ऐसा नहीं लगता है मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है।
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही है। तो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और साथ की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साथ की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने की साथ से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं।
1: क्या बात है भारत जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी, उस पर कोई धुन बजाए, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपके पास।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत गॉड है थे मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी,
0: देखो ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ
0: आपने देखी होगी ऐसे,
1: और
0: की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमको
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ,
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते
1: हैं जी।
0: फिर ये हुए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरी पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र माप, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना बिजनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का है,
1: हाँ बिल्कुल है,
0: ठीक है
1: आखिर में,
0: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हम तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा,

0: ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साध है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा दूसरों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए। आप माध्यम है, आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है। आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता। सबसे पहले जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया रहा है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर, अब ये त्रिपुरा बासुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। मैं ये बासुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हें का आशीर्वाद है। सर ये बासुरी में बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आपको
0: साउंड क्रिएट नहीं कर
1: पाता
0: हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें मेरे साथ मेरे हमेशा साथ रहता है।
1: वाह,
0: हमेशा
1: क्या प्यारा।
0: हाँ, ये मेरे स्लो फिट में रहता है।
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये तीव्र माँ का ये है
1: जी।
0: अब ये तीव्र माँ का यहाँ है ना, इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का।
1: जी जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले, के साथ रहने वाले थे, संगीत में खोए जाने वाले थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के शरीर छोड़ के जाते थे कहीं पर। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में ना आता है, वो देखना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजा

si è così per quelle parole.

0: मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
1: जी,
0: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।

कि है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी, तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है। अच्छा, बहुत ही छोटी सी, और जैसे ये चल रहा है।

0: को बांसुरी पकड़ा दी गई थी। सही, मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता ना जी, कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ ली होगी। एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक छोटा रहता है, शिशु होता है, जब शिशु होता है तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई।
1: वाह वाह वाह।
0: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बोलता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी मेरे दादाजी के साथ में क्या था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी उनको 5 साल की उम्र थी,
1: इतनी कम उम्र
0: में वही लाख जोड़ के गया था। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रख ही गया था। तो उस तरह का मैं उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा ऊपर थोड़ा सा करके दिखाया
1: जी,
0: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरवन के साथ,
1: वो उम्र भी बहुत छोटी थी,
0: काफ़ी छोटी थी। 2 साल बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सरवन, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ,
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक।
0: वो ये आशीर्वाद है
1: जी।
0: अब वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, कॉलेज पीते हैं कि क्या करते
1: हैं, सवाल भी नहीं आई जी। तो इस तरह का माता बाकी तमाम खेलकूद से सिनेमा से,
0: सिनेमा से इतना नहीं हुआ
1: जी।
0: उस वक्त म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीन एज में तो मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने

0: रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं? मेरी माता जी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माता जी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे गुजिया, घर की मेन मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता मैडम, बिल्कुल बिल्कुल हमारे हमारे घर में जो सब त्यौहार पर अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो ले जाते, बट घर पे ही बनता है
1: और वो ठीक बनाती
0: ठीक बनाते। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था। हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने लता जी के, कयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनता रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक वर्मा, अब बहुत सारे लोगों को वो गाने नहीं पता। अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने भी नहीं सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है। तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके माइंड में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाएंगे ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है,
1: चढ़ाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान,
0: तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल,
0: हो, तो वैसे होते होते फिर वो उस हिसाब से चलता। तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम, पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुरुजी की सनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त की। फिर ज़्यादातर ये रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वाज दी बेस्ट प्लेयर,
1: अरे बाहर निकलिए। तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज़्यादा रहता था, ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम कर रहा।
1: क्या बात है,
0: विरोध ये था कि जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा था, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट, हर चीज में खेल रहे थे, बल्कि खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है धुंधर बच्चा है, कहाँ मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: बिल्कुल
0: कोई मैसेज नहीं करते कि बच्चा जगह है का। तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए खेलने तो चले गए
1: जून के तहत।
0: हाँ, वो तो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है दाल भर पानी। और फिर उसको क्या होता था, फिर जैसे आस पास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे
1: हैं,
0: वो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस दिन में, तो ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है।
1: पर घर वालों को भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती है,
0: आनंदों में ही पड़ती।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे, पर आप इशारा समझ के भी आपने मुझे
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हैं, पता नहीं
1: स्कूल के बाहर आ जाते
0: हैं ना, स्टूडियो से मजा आता है।
1: पिताजी की गलियारों से जुड़ी यादें बताना, पिताजी तो साफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहाँ पे
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे,

पेपर वर्क के लिए जाते थे उस पर, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था। उनमें ज़्यादा फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने में। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शेरानी का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ। वो अभी जो मैंने कानपुर चलाया वो सब पेटी वाले सोसाइटी आते थे, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सोसाइटी आज भी हमारे घर पर है। तो वो उस पर जो बैटिंग मिलता था वो कानपुरा और वो पेटी वाली के थे। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी

0: प्रॉपर्टी आज भी हमारे घर पर है। तो वो उस पर जो बैकिंग मिलता था शुरू में वो कानपुरा और वो पेटी वाले के थे। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ कहीं किसी मानसिर के किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे खुद सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी। उसमें अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस पर क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सिंगर और जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी। दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि इस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी। और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर के चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सीनियर थे और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अभी हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में तो माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद है। तो वो एक हमारा चक्कर तो वहाँ पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो आप। तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होकर और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको, ऐसा हो जाए तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का। तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास नहीं होती थी, एग्जाम नहीं होता था। आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी बीच में उस स्टेज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला, अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए, इतने सारे लोग इतने सारे लोगों के बीच में। तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी जो वो विभूति सब बैठे हैं उस रूम में वो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो घबराहट रह गई थी। तो वैसा रेगुलरली वैसे ही था, बचपन में ज़्यादा मजा आ जाती है।

0: के कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुना न भूले कार्यक्रम उद्यालय उनकी यादों के 31

ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

lesson. जय दिन साथ आज मैं श्री अंबी आप सभी को मेरा आदाब नमस्कार जय हाँ श्रोताओं इसमें आज सुनिए चंद गजलें संख्या है चित्र सिंह और जगदीप सिंह कवि संग्रहालय चित्र सिंह जिनको गंभीर ख्याल है इन दिनों जिनको गंभीर ख्याल है सबसे वही जा रहा है इन दिनों

अगली पेज कैसे है? शहर के लिखे हुए चल आवाज की तरह अभी वो कंचन कह रहा है, अभी है स्तर

आपने तो हर्ट कर आपने फील किया है आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र और आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। स्थानीय लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आपके लिए स्वागत है। इसमें आज हम आपको सुनवाते हैं मैथिली गीत। बता दें क्षेत्र मिश्रा

Quindi, Pietra, lasciami tanto per la mia vita, perché

प्रसारण के तहत समाचार श्रृंखला आप सुन सकते हैं। राष्ट्रीय आदत पर 45 मिनट विविध भारती के राष्ट्रीय सुबह के कार्यक्रम आपके लिए का समय होगा रात्रि 9 बजे। आज के फनकार का आनंद उठा सकते हैं रात्रि 9 बजकर 30 मिनट।

फिल्म का गाना सुना गीत आनंद बख्शी तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई वाली। अरे भाई ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
1: बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी से आ चुके हैं और तुम इतना मिल पाए हो, वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक दे देता हूँ। कहाँ है सब लोग?
1: कितने मान में है, डाइनिंग रूम में शुरू करने का जाओ। मैं चलो
0: आंटी, आप कैसे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक दे देता हूँ।
1: बहुत देखो ना, फिर 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। तुम बता रही थी हम मिलाकर 1400 मिलते हैं और 2 साल बाद।
0: अरे भाई मैं उसकी ये कैसी बात कर रहा
1: हूँ। हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
0: मैंने गौर नहीं,
1: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुम में दिन में जान लगाते हैं। मगर ये जरूर है जो वैरायटी उनके यहाँ मिलती है ना,

0: अच्छे भले थे।
1: भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कठिन भी करते हैं तो चर्चा नहीं।

0: जाना।
1: तुम मुझे माफ कर दिया ना?
0: बिल्कुल चले बात बात पर माफी मांगने आए हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से अजनबी किसी गाड़ी में इकट्ठे सफर कर रहे हैं।
1: तो तुम्हें कैसे लोग अच्छे लगते हैं?
0: जैसे क्या चाहकर मेरे सामने बैठते हैं। मैं चाकरी बची है, दो मेरे दोस्त आते तो ये भी नहीं रहती।
1: अब तक कितनी कॉपियां खा चुकी
0: हूँ? पूरे 100 ग्राम लाई थी। तुम आए नहीं, इंतजार करती रही और इन कॉफी के कारण बताए जाते इन रंग बिरंगे कारणों से डाले डांसर बनाती रही। देखो कितनी ढेर सारी डांसर बना रहे हैं।
1: मैं देख रहा हूँ, अब क्या इनको नचाओगी?
0: किसी को नचाना आता है तो बात
1: तो फिर इनका क्या होगा?
0: मुझे क्या मालूम, असली में वक्त में कर रहा है ना बना रही थी। अब तुम आ गए हो तो छोड़ेंगे, मीठी चौकी खाओ और फिर मीठी बात करो।
1: मीठी मीठी बातें सुनने का बहुत शौक है तुम।
0: जो मीठे बोले के सिवाय जिंदगी में और अच्छा है?
1: बहुत कुछ है कमला, बहुत कुछ। तुमने तो भी इसकी आदत कर डाली।
0: सोचने समझने के लिए तुम से क्या सोच लेते हो?
1: किस बात का?
0: बाहर जाने का।
1: जा रहा हूँ।
0: बहुत जरूरी है जाने।
1: कमला, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं एक बहुत बड़ी युग है जहाँ पिछड़े हुए घोड़े को लोग डरा देते
0: हैं। तो सभी घोड़े को रोकने तक नहीं आते।
1: लेकिन मैं तो इससे पिछड़े ही रहना चाहता। 2 साल विदेश में लगा कर जब लौटूंगा तो देखा मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी।
0: बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी
1: मुझे। यकीन
0: फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा।
1: जाहिर है
0: कुछ जितना होगा उसको संतोष कर सकोगे। और ज्यादा पानी की इच्छा खत्म हो जाए।
1: अगर अंडिशन खत्म हो जाए कमला तो मैं समझता हूँ जीने का मकसद भी खत्म हो जाए।
0: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहो भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे। देखो ये बात कभी खत्म नहीं होगी।
1: लेकिन हौसला छोड़कर एक जगह बैठ जाना भी तो कुछ जरूरी है।
0: मैं तुम्हें हौसला छोड़कर कोई काम को नहीं देती। लेकिन देखती हूँ तुम कभी कहीं के साथ भागते हो कहीं तुम भी सिर्फ मस्ती करके न रह जाए। मुझे घर से आते हुए साथ खाने की तमन्ना नहीं।
1: इस वक्त तुम्हारा ऐसा सोचना शायद ठीक हो, लेकिन ऐसा छोटा सा घर पालने के बाद फिर जल्द ही वो घर बहुत छोटा सा नजर आने लगता है। तब कई नई ख्वाहिशें जन्म देती हैं और उस वक्त उनको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: तुम हर तरह की खुशी मिले और मुझे फख्र हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो कमी डाली।
1: डाली
0: क्या हुआ?
1: तुमने मुझे डाली कहा रखी?
0: कोई पाप कर दिया मैंने?
1: मैं फ्रांस में मुझे कभी जाने न दें।
0: क्या मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम्हें प्यार से पुकारने नहीं सकता?
1: नहीं, प्यार नहीं।
0: तो
1: तुम डाली देते हो तो मुझे ये महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उठता ही पति पत्नी हैं। मुझे लगता है बनावट की बुआ की है।
0: तुम्हें मेरी और कौन कौन सी बातें से बनावट की बुआ थी?
1: बस अब तुम बुरा मान गए। साहब नौकरी चाहते हैं, काश आपको एक ट्रॉफी और खिला सकती तो थोड़ी देर और मीठी बातें कर सकते।

0: तो खिलाओ, मुंह उठा करने को जी जा रहा है।
1: माता मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
0: खैर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। थैंक यू। अभी तक मैं आ
1: रहा हूँ। आवाज के देर से नहीं मत कर।
0: कहाँ गई? तुम्हें को तो ढूंढ रहा था।
1: आप
0: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?

0: देर हो गई आने में, फिर भी इतनी नाराज हो मुझसे। बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
0: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम्हें तो बताओ।
1: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है। तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बनी थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
0: तो जाहिर है पहले मनाने वाला कौन? ठीक है यार, अब देख अगर हो जाती है, मांगी बाकी एक बार दो बार
1: डोंट बी सो सीरियस।

दीनानाथ का। इस नाटक का तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: तो सुना न भूलिए कार्यक्रम उजाले

इस परंपरा का एंड पीयूष मेहरोलिया की आवाजों में सुनिए सत्य प्रेम की कथा फिल्म का गाना। प्रीत कुमार ने लिखा है, संगीत नीत लगा है।

सबसे स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जीरो फिल्म का इसके गाने। इस गाया है अभय जयशंकर ने, गीत इरशाद कामिल का है, संगीत अजय अतुल का है।

दी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में, कौन उसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पहली नजर होनी चाहिए। और इससे न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवन से संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित

राष्ट्रीय सेवा देश की शरीर में धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से गवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दशक की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

सीखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाने

अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म की सुपर डुपर हिट फिल्म

कश्मीर की जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपने एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता।

इसके बाद मानव

लेखक अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर दारा और

फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद

देश में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था शहजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पॉन्स के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से

चिंतित होगा। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम शुरू ही दिया।

मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और युग युग जियो।

फिल्म शेरशाह जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला।

से सम्मानित किया गया। फिल्म में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर फिल्म और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं।

छोटे होते हैं, उन लम्हों को अपने मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजोड़े अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी।

esta ser una pasada.

की करते रहे पेड़ों से। रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए खिलखिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी

Thank you.

0: उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उन्होंने उनकी यादों के एक